हम हे राही प्यार के आसतु शुणा एक कथा चित्र गीत मिलित कंठ से गई कुमार सानू एवं अलका याग्निक।

0: ସତ୍ୟସାଇ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବିଳାସର ଦାସ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହେବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थयात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया।

0: मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु आमर विशेष वंदना कार्यक्रम।
2: स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाहि देले अनुसरी सकल घटरे पूरी समानरे नुहे सान बड़ करी जलस्थल वनगिरी आकाशरी सबुटी तुमर परिप्रकाश प्रभु तुमे नित्य तुमे नूतन तुमे पुणि सनातन तुमर अनिंद्य रूप लावण्यमय कांति अनुपम अनन्य प्रभु तुम रूपर औज्जल्यरे उकुटी उठुथिबा अनंत भाव सत्ताकु भेदिबाकु ज्ञान काही अपार करुणा टिकक पाइबा पई हात जोड़ी मिनती करे प्रभु।

0: संप्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरंट कप इत्यस्य 35th-ICC संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायां आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक शुणत आम आज कार्यक्रम सूचना आमर स्वास्थ्य सका 7:10 रही आमाशय संपर्क आलोचना आलोचना कर डाक्टर निरंजन कर प्रभात परिक्रमा सका 7:25 सका 7:35 कथिकार रही आलोचना सारस्वत साधक कालीचरण आलोचना कर डाक्टर विजयानंद सिंह सजफुल सका 7:40 कंठदान कर विष्णुमोहन कवि और शरण्या मिश्र संगीत ओम प्रकाश महांति श्रीक्षेत्र माधुरी सका 8:30 अणसर विधि संपर्क कहिबे रामचंद्र दास महापात्र वैदेश विलासर 72वां भाग सका 8:45 गीत गीतिका सका 9 दिन 10 प्रचार कर नाटक सुवर्ण वसुधा रचना डॉ प्रसन्न कुमार मिश्र प्रयोजना गोपबंधु चौधरी अभुला गीत दिन 11:10 कंठदान कर श्रीकांत कुमार दास और स्निग्धाराणी कर दासकाठिया गीत दिन 11:30 परिवेषण करेंगे कालिंदी चरण होता और नवघन बारिक अनुरोध में हिंदी और ओडिया कथाचित्र गीतर कार्यक्रम मंजुल मध्याह दिन 12 सांताली गीत प्रचार कर दिन गोटाए 10 परिवेषण करेंगे शेखर सोरेन और साथी नारीमहल दिन गोटाए 20 आलापर रही क्रीडा समीक्षक समीक्षा पट्टनायक सहित साक्षात्कार ओडिया कथाचित्र दिन 2:45 असरंती अपराह्नरे हिंदी कथाचित्र गीत अपराह्न 3 अनुरोधरे ओडिया लघु संगीत एवं ओडिया आलबम्र कार्यक्रम चिरहरित अपराह्न 4 देशभक्ति गीत अपराह्न 4:55 ओडिया कथाचित्र गीत अपराह्न 5 अपराह्न 5:30 जीववाणी प्रतिक्रिया विषय रही वर्तमान परिवर्तनशील समय युवपीढ़ी कौशल विकास केते जरूरी गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर 66वां भाग संध्या 6:10 विकास मंत्र संध्या 6:30 आलोचना उपांत अंचल क्रीडार विकास केन्द्रीय योजना आलोचना कर क्रीडा सांबादिक समीक्षा पट्टनायक ओडिया कथाचित्र गीत राति 7:02 जिला हालचाल आज रही झारसुगुड़ा जिला हालचाल राति 7:25 कृषि संसार राति 7:30 वर्षा दिने पाल छतु चाष संपर्क डॉक्टर विश्वरंजन पट्टनायक आलोचना हिंदी कथाचित्र गीत राति 8:02 शुणे ओडिसी गीत राति 8:30 गाई पश्चिमेश्वर जेना कंट्री वाइड और इनसाइड्स आकाशवाणी दिल्ली रिले कर प्रचार कर राति 9:30 राति 10 शुणे सुगम संगीत लंडन रो ओवाल ठारे आईसीसी महिला टी20 विश्वकप 2026 इंग्लैंड एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य अनुष्ठित होगा थिबा द्वितीय सेमीफाइनल मैच रो धारा विवरणी हिंदी एवं इंग्राजी भाषा रे रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली रु आज राति 10:30 रु खेल शेष पर्यंत सुनिले हमर आज कार्यक्रम रो सूचना हमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे ठीक परे।

कलह पचाति भूतानि, कलह संघरति प्रजा, कलह सप्ति सजागर्ति, कलहि दुरति क्रमः। आम देशर महान पंडित अर्थशास्त्र प्रणेता आचार्य कौटिल्य बा चाणक्यंक द्वारा रचित एही संस्कृत श्लोकर सार मर्म हेउछि, एही संसारे सबुठारु बलवान हेउछि काल बा समय। ए जगत कालर अधीन, कालर प्रवाहरे समस्त क्षयशील। प्राणी माने निद्रा गले मध्ये काल सेमानक ठारे अविरत विद्यमान। काल बा समय को अटकाइबार शक्ति कहार नाही, कि समय कहा पई केबे अटकी जाए ना, से सदा चलमान।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार

0: मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला

0: में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ानें डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: ଠିକ ସମୟରେ ବୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଅମଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଆନ୍ତୁ।
1: ଚାଷ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଭଲ କିଏ ଜାଣିଛି ବିହନ ଠିକ ସମୟରେ ବୁଣା ଯାଇ ସାରିଛି।
0: ମୁଁ ଫସଲ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ଏନପିଏସ ସଞ୍ଚୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି।
1: ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏନପିଏସ ସଞ୍ଚୟ କଣ?
0: एनपीएस संचय होउछि भारत सरकारको प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा परिचालित एक पेंशन योजना जेउथिरे मात्र 250 टंका रे खाता खोली टंका जमा करथिले आपनकर वृद्धावस्था रे मासिक पेंशन मिलिबो। आजि ही एनपीएस संचय रे जमा करबा आरंभ करंतु आउ निजो भविष्यत सुरक्षित करंतु। अधिक विवरणी पई निकटस्थ जनसेवा केन्द्र किंबा निजो बैंक सहित जोगाजोग करंतु। एनपीएस संचय सहित भविष्यत पई प्रस्तुत रहंतु।
2: अच्छा तमो सब रिपोर्ट देखेला HIV टेस्ट हेची?
3: नाही डॉक्टर बाबू, सेटा कोण निहाती जरूरी?
4: आज्ञा हां, गर्भावस्था रे प्रत्येक महिला निजर एचआईवी परीक्षा करैने अजणा आतंकठु दूरै रहंतु।
5: जदि रिपोर्ट पॉजिटिव आसे ताले उपयुक्त चिकित्सा जरिया रे निजे तथा शिशु उभय एड्स भली मारात्मक रोग को प्रतिरोध करंतु।
4: मनि रखंतु, एई परीक्षा एवं चिकित्सा निकटस्थ सरकारी डाक्टरखाना रे थिबा आईसीटीसी केन्द्र रे मागणा रे उपलब्ध।
5: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1097 सह जोगाजोग करंतु।
4: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित रे जारी।
6: শ্রোতাবন্ধু, আমি সমস্ত আজকাল গোটে কথা অনুভব করুথিবা আম ভিতর অনেক বা কিছু লোক যেতবেলে বিদেশর বা সহরর নিজ গাঁকু অনেক দিন পরে ফেরি থাকে আউ নিজ গাঁকু দেখতে কহতি আগপরি আউ আম গাঁ নাই গাঁ আউ আগপরি লাগুনি। আগর যেমন বড় বড় বরগছ থিলা মালমাল তোটা থিলা আখি পাউনথিবা ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିଲା, ବିଲ ଗହିରି ପୋଖରୀ ଥିଲା, ପୋଖରୀରେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ପାଣି ଥିଲା, ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ତାଳ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେସବୁ କମିଯାଇଛି, ଘର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଗାଁରେ ସେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସେ, ନିର୍ମଳ ପବନ ଥାଏ, ସେସବୁ ନାହିଁ, ଗରମ ହେଲାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁଧୁରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଚଳଣି ବି ସୁଧୁରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆଗପରି ଆଉ ନାହିଁ। ଏକଥା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁର କଥା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ସତକଥା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଗପରି ଆଉ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ କି ନିର୍ମଳ ନାହିଁ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एडिसे सकुरुचा आजर गीत गीतिका आकाशवाणी कटक प्रचार करुचु नाटक सुवर्ण वसुधा, रचना डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्र, प्रयोजना गोपबंधु चौधरी। नाटक सुवर्ण वसुधा।

0: Papá. Papá.
1: Papá.
2: ¿Qué? ¿Moto cura?
1: ¿Cómo baba?
2: Ama. ¿Muy iti?
1: ¿Tú me has hecho pájaro para qué? ¿A moto mujer que te cojilini? ¿Cuál es tu morajigali, papá?
2: ¿Cay? ¿Qué chinaito?
1: ¿Qué chinaikinti? ¿Jete ver de cuchi tu mechinta magna? ¿Qué te ver somudro colore chupchap y vosucho? ¿No le pájaro de recorucho y muti? Ahora tire, ya te ver gumpaco perucho. ¿Chupchap soy ruicho? ¿Un kichu kichi con una? ¿Cuál es, papá?
2: ए मूर्तिटा सरिनै बोली आउ कोनसी कथा रे मन लागुनै रे मा
1: तुमो के कहुथले जे पहाड़ धेरे एत्ते बड़ो मूर्तिटा ए काटिबाकु
2: कहिबो के मन हला छाड़ तू जा गलु सेई मयरो संगे खेलिबु जा
1: ना सेटा बड़ो दुष्ट बड़ो गेली होउची कांदो ऊपर बसी पड़ी मो बेणी के एमती जोर टांचु जे बड़ो काटु छी जे बाबा
2: सेईटा सब दिने सेया रे मा ठीक था बापा पुरी हाँ, तू गलु
1: कुआड जीबी मा भी तो गुंफा रे नहांती सकल सकल गच्छ लगेवा कामरे लागि जाई जंती मु एठी बसले तुमर कोन असुविधा हबो कि बाबा
2: देखु छु तो मूर्ति गडुची
1: अच्छा बाबा कुहो ना ए मूर्तिटा कहार
2: ए मूर्ति जॉन कर
1: जॉन
2: हाँ जॉन
1: सिक्की बाबा
2: देख मा मूर्ति गढ़ा सरु मु तते सब कथा कहिबी
1: नहीं तुम्हे आगे कुहो परे गढ़ीबो ओफ ओफ परे करिबो तुम्हे आगे कुहो ना बाबा
2: जॉन जणी पृथ्वीर मणिस
1: कोन कहिलो बाबा पृथ्वीर मणिस पृथ्वी माने
2: हां मां कोठरु पृथ्वी विषय रे केते गप सुनिचु
1: ओ से किंबदंतीर पृथ्वी जोटा एठारु 1000 कोटि 11 लाख आलोक वर्ष दूर रे एक पुरातन गैलेक्सी रे एक पुरातन सूर्य को 365 दिन रे थरे प्रदक्षिण करी करी शून्य रे भासुथिला सेई पृथ्वी की बाबा
2: हां मां सेई पृथ्वी जोठ थिला सात समुद्र खेरा नदी नद छर निर्छर केते ना केते महादेश जोठ चली थिला षड ऋतुंकर नित्य लीला जोठ मानवर सभ्यता लहड़ी भांगुथिला सेई शस्य श्यामला तुषार धवला गेरुआ माटीर पृथ्वी रे एकता जन्म नहीं जड़े महान वैज्ञानिक ना जन अनंत शून्य खुरी खुरी सृष्टि तत्व जानवाप से गढ़ी गोटे अपूर्व महाकाश जान
1: महाकाश जान
2: हाँ आलोक बेगर गति कर सामर्थ्य थिला से महाकाश जान
1: सतरे
2: से महाकाश जानटर ना रखा जाता सुवर्ण वसुधा
1: सुवर्ण वसुधा
2: हाँ मा मानव बुद्धिर श्रेष्ठतम निदर्शन महाकाश जान नुहे तो विज्ञान जैत्र पताका थिला से सुवर्ण वसुधा
1: कही जाओ ना बाबा मो जानिया को भीषण इच्छा होची
2: दिने तीन जन सचेत मनीष को गर्भरे धरी सुवर्ण वसुधा छाड़ा पृथ्वी महाशून्यर अभिमुखे 1970 मसीहा एप्रिल मास विषुव संक्रांति दिन
1: अच्छा बाबा 1970 मसीहा माने कौन
2: कहिबा गले तार किछि माने नहि बा तेबे पृथ्वीवासी सेहि परि भाबे वर्ष गणना करूथिले
1: अच्छा से सुवर्ण वसुधा रे थिले वैज्ञानिक जॉन
2: हां जॉन इंद्रजीत ओ सोफिया
1: इंद्रजीत ओ सोफिया माने तुमे ओ मा
2: हां मो
1: तुमे तुही पृथ्वीर मनीष काई ए कथा त तुमे केबे कहिनो बाबा
2: कहिबार आवश्यकता पड़ि नै बा
1: तेबे ना ठीक अच्छे तुम्हें कही जाओ मैं भी सब कुछ बुझी पार भी जे
2: हाँ मो सोफिया एवं जॉन जॉन सोफिया एवं मो आमे तीन जन अपरिसीम आग्रह एक दुर्दांत तो महाकाश अभियान रे बाहरी पड़ीथिलु सांगरे थिला अनेक आश्चर्यजनक औषध और जंत्रपाती ता छड़ा पृथ्वीर बहु सुंदर सुंदर पशुपक्षी को निश्चित करी ओ सेमानकर अवयव को क्षुद्राकार करी गोटे गोटे कैप्सूल आकार आनी थिलु नाना प्रकार वृक्षलतार मंजी और धान गहम प्रभृति बहु शस्यर बिहन
1: बुझिली
2: मानवर मस्तिष्क ठारु 100 गुण प्रखर तेजियान एक जंत्र मस्तिष्क सुवर्ण वसुधारे खंजा जाइथिला आमर परामर्श क्रमे सेही मस्तिष्क परिचालना करूथिला सबकिछि भीतरर खबर पठाउथिला बाहरकु बाहरर खबर आनुथिला भीतरकु 5 लक्ष वर्ग माइल पर खटुवा।

0: बड़ करुण जनकर से शेषतम अनुरोध मा
1: आ मु तुमर से शेषतम कन्या मत कर
0: मत क्षमा कर मा बड़ निष्ठुर से अनुरोध
1: ए ग्रह रो आदि पिता तुम्हें जनकर बंधु मानव जातिर भाग्य विधाता तुम्हें ये दुर्बल कहीं बाबा मु खूब खुशी बाबा जन मत ही मागि जाइछंती ए तुमर सौभाग्य
0: मधुकरा

मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों ने बायो विलेज तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, बी कीपिंग और बायो फर्टिलाइजर, इन सब पर पूरा फोकस रहता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को बायो विलेज 2 बहुत मजबूती देने वाला है। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हूँ। मेरा आग्रह है कि आप भी उसे अपनाने का प्रयास कीजिए।

0: अजणा लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबु आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाट सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाट सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूलद्वा चेटिनाट सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: कार्यक्रमरे शेष गीतटि गाइछन्ति स्नेहधारणीकर हरिहर सेठिंगकर रचना।

0: हे कृष्ण
1: अच्छा
0: दुर्योधन कपटरे पसा खेल
1: करी मते जाना नथिला
0: आमे दुई जण शपथ करिथिलु
1: ए पसा खेल रे जे हारिबो से 11 वर्ष वनवास जाउ पडिबो
0: सेई दशाटा मते पडिछि
1: पडियोला का
0: नारायण बोले ठीक होइछि
1: बड को बड दुख देइछि दैबो सान को सान दुख पडिले सहीबो
0: पसा खेल जेतले आरंभ कला मते त काई पचार नथिला
1: पचारि क्रिया आरंभ करि नथिला का
0: ले हारि गला समरे डाकिले मुकी छुणिबि कि
1: किछ सहाय बि नहि
0: पांच भाई जाक बनस्त को जीव
1: बनस्त को चली जीव
0: ए समय अर्जुन दे बेगे चली
1: गले
0: नारायण को चरणे
1: नमस्कार कले
0: परपाति कल्याण बान छंती
1: दामोदर
0: बनस्त को जाओ हे
1: पांडव सुंदर
0: अर्जुन बोले किड़े बड़ कथा आपण कहउचंदी हे
1: किस हला
0: आपण पर परा बंधु एवं सखा मध्य हेबे
1: मते जदी जंगल को पली जाउ तो जदी हाथी मारी दबो थोड़ पार रे जीवन चली जीव का
0: ए तुम भौणी सुभद्रा को जे विवाह करिछि
1: हां
0: तारो पांच मास गर्भवास होईछि
1: जदी जंगल रे छुटी जन्म हबो ताकु के का सुस्त रे लालन पालन करिवो
0: नारायण बोले तुमे चिंता करना
1: मो भौणी को मो द्वारका पर को नै जीवी
0: हेले तुमे पांच भाई जा को निश्चय बनस्त को
1: बनस्त को चली जीव
0: सुनी करी अर्जुन जे बेगे चली गले सुभद्रा को पासे जाई
1: प्रवेश होइले
0: सुभद्रा को कहउछंती
1: किस कहले।

आकाशवाणी कटक आरंभ करछु कार्यक्रम मंजुला मध्यान आपण मानंकर प्रिय एवं मोर प्रिय कार्यक्रम आपण मानंकर अनुरोध रे जो गीत गुडी कासी आम पाखरे पहुंचिची एसएमएस जरिया रे आरंभ करबा कार्यक्रम मंजुला मध्यान किंतु एठी कहि रखिबे श्रोता बंधु जेतेबेले आपण जोठु भी लेखुचंते जोठु सुनुचंते निजर ना आ जागा ना निश्चित भाव लेखंतु लेखिबा को आदम भूलंतु नहीं आ क्लियर भाव लेखंतु को फिल्म र गीत शुणा चाहते आपण मानकर ना एवं ठिकना या व्यतीत आउ गोटे कथा भी कहवाक चाहिए अनेक गुड़ी एसएमएस आसी मंजुला मध्यान आपण मैंने जानते आरंभ केवल हिंदी और ओडिया कथचित्र गीत ही शुणीपर कि आलबम गीत लिखिक पठे अनेक गुड़े गीत बाध्य रखीदेवी चारिटा बेले चीरहरी थे केवल से गुड़क स्थान देपर कि जितेबले आपण एसएमएस कर हिंदी और ओडिया कथचित्र गीत लिखिक पठात आपण मैंने कार्यक्रम में स्थान पाई तेज जाऊ एथर आउ डेरी नक आरंभ करवा कार्यक्रम मंजुला मध्यान अनेक गुड़ी एसएमएस तो आम पाखे आँच सारी जो गुड़ी आलबम गीत थी मुझे रखीदी तेज नारायण प्रधान ब्रह्मपुर बुगुड़ा गंजाम आम नियमित श्रोता आपण मैंने बहुत भल पाते रेडियो को आरंभ कही काली भी कही तेरे आरंभ करवा आपण एसएमएस रु नारायण बाबू आपण शुणा चाहते बेवफास नामर गोटे गीत गीतटी को गई सोनू निगम किंतु ये कही रखी आज उपस्थापन अच्छी मुझे छेना पट्टनायक तेज श्रोता बंधु आपण पसंद गीतटी शुणी नि

जितेन्द्र लिखिछन्ति नियाली माधवरु जीना सिर्फ मेरे लिए गोटे गीत शुणा इच्छा करिछन्ति कथचित्री आम पाखे ना से आखिरी रास्ता कथचित्र गोटे गीत शुणापी टुकु और लिजा बांकी आपण मैंने एसएमएस कर गीतटी आम पाखे ना से क्षमा चाहू कार्यक्रम शेषे आउ गोटे एसएमएस आसी कांत लाठगड़ कैलाश बेहरा और कामिनी बेहरा लिखिंट आपण शुणा चाहते पगल करीतर कथचित्र गोटे गीत गीतटी को गई निवेदिता ये कही रखी श्रोतबंधु आउ जो बंधु मैंने आलबम गीतगुड़ी शुणापी से चारिटा बेले रखीदे निश्चित भाव में चारिटा बेल कार्यक्रम चीर हरित आपणपरेंगे तेज निवेदिता कंठ शुणा पगल।

0: ಎಟಿಸಿ ಸಲಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಜುಳಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಕಾಶವಾಣಿ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की

0: मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said a terrorist is a terrorist and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: 7 migrant workers have lost their lives after a big chunk of rock slid and fell on them in Bengaluru South Taluk today. The tragedy struck at the Kaveri Crusher stone quarry in Madhapatna village. Those injured were evacuated from the accident site and are currently under medical treatment. The police have registered a case and the hunt is on for the owners of the quarry. The Delhi Police Special Cell has arrested 4 accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital on instructions of ISI handler Shahzad Bhatt.

0: game in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए श्री मोदी ने कहा भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को

0: आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा तीन दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावलीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को सौंपा।

0: उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर

और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को

0: कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए
1: केवल आकाशवाणी।

0: प्रोजेक्ट प्रतिष्ठा करने के लिए वो एमओयू साइन किया गया है। यानी 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हमारा उड़ीसा में वो निवेश होने जा रहा है।
1: एही प्रकल्प माध्यमरे राज्य रे बॉक्साइट खनिज कार्य, अलुमिना रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग, अनुसंधान और गवेषणा, डिजिटल भित्तिभूमि विकास एवं राज्य रे एक उत्कर्ष केन्द्र स्थापन करने पर प्रयास करा जिवो। शिल्प प्रतिष्ठा द्वारा प्राय 53,500 निजुक्ति सृष्टि हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिछन्ते। कार्यक्रम में शिल्पमंत्री संपत चंद्र स्वाई, मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग एवं आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड परिचालना निर्देशक करण आदानी उपस्थित थिले। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित मैट्रिक सप्लीमेंटरी और राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा आज आरंभ हो परीक्षा आसंता 10 तारीख पर्यंत चलो। उभय परीक्षा 251 केन्द्र में अनुष्ठित हो। आगामी विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को सुरक्षित श्रृंखलित एवं सुचारू रूपे संपन्न करने उद्देश्य पुरी पुलिस कार्यालय आरक्षी अधीक्षक प्रतीक सिंह की अध्यक्षता में एक गुरुत्वपूर्ण समन्वय बैठक अनुष्ठित होई। बैठक में भक्तों सुविधा, सुरक्षा, श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था, बड़दाण्ड में भिड़ और ट्राफिक नियंत्रण एवं सेवायत सुचारू रूपे समन्वय रक्षा उपर आलोचना करा। रथयात्रा समय आपातकालीन सेवा और जनसचेतनता उपर विशेष गुरुत्व दिया बोली श्री सिंह कहते। बैठक में 36 निजोगर सदस्य उपस्थित थिले। पुरी श्रीमंदिर आसंता 18 तारीख में वैषयिक जांच करा जिवो। श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन वैषयिक कमिटी और भारतीय प्रत्नतात्विक विभाग सदस्य मिलित भाव यह कार्य करिवे। एने पूर्त विभाग पक्षर् भारतीय प्रत्नतात्विक संस्था एएसआई को चिठी माध्यम अवगत कर प्रतिवर्ष रथयात्रा पर गर्भगृह खाली रही आवश्यक मरामती जांच पर पर्यवेक्षण को नहीं एक बैठक अनुष्ठित होगा सहित कमिटी सुपारिश क्रमे नीलाद्री विजय पूर्व आवश्यक मरामती कार्य संपूर्ण अन्यपक्ष रथ खल तीन रथर निर्माण कार्य जारी रही। बेढ़ा निर्माण कार्य शेष होता बेले रथरे खंजा रथर कलश बेदी सिंहासन कार्य हंसपटा कन्यापटा ठेकेरा बाड़ बुलाजीबा और मंडली कार्य बाकी रही। तीन रथरे चित्रकर सेवक माने रंग देवा कार्य जारी रखिछन्ते। दरजी सेवक कपड़ा कार्य अनुकूल करिछन्ते बोली आम संवाददाता जणाइछन्ते। भुवनेश्वर मिशन शक्ति भवन प्रेक्षालय रे शक्ति वंदनार महागाथा बलराम दास लक्ष्मीपुराण शीर्षक जातीय आलोचनाचक्र पर्यटन विभाग पक्ष अनुष्ठित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जोगदे लक्ष्मीपुराणर साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व संपर्क आलोचना कर नारी सशक्तिकरण एवं सामाजिक समानतार बार्ता संपर्क विशिष्ट गवेषक और वक्ता मतव्यक्त कर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रमुख उपस्थित थिले। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। क्रीडा सांबादिकतार गुरुत्व और सेमानंक कार्य प्रति सचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज विश्व क्रीडा सांबादिक दिवस पालन करा जाउछि। चलित वर्ष एहि दिवसर वार्ता रहिछि निरपेक्ष प्रतियोगिता, सच्चोटता एवं प्रभावी खबर संग्रह। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन एपीपीएस पक्षरु 1994 मसीहारु एहि दिवस पालित हो आसुछि। क्रीडा सांबादिकतार इतिहास 1800 मसीहारु आरंभ होइथिला। 1920 मसीहा बेळकु एहा पूर्णांग भावे विकसित सेवा आरंभ करिथिला। क्रीडा सांबादिकता वर्तमान समय रे सांबादिकता वृत्तिर एक प्रमुख लोकप्रिय अंश पालटिछि। मनीष जीवन रे क्रीडार प्रासंगिकता और प्रयोजन को लोकलोचनकु आणिबारे क्रीडा सांबादिकंक भूमिका अतुलनीय। ए संपर्क रे वरिष्ठ क्रीडा सांबादिक सुकेश बेहरा प्रतिक्रिया रे कहिछन्ति।
2: क्रीडा सांबादिक दिवस शुभेच्छा और अभिनंदन समस्त श्रोता को। आज विश्व क्रीड़ा सांबादिक दिवस आम पालन करुच्छू। सारा विश्वव्यापी पालन होड़ा सांबादिकों कठिन परिश्रम, निष्ठा और वृत्तिगत सत्यनिष्ठा को सम्मान देवा उद्देश्य यही कार्यक्रम बा दिवस आम प्रत वर्ष पालन करसुचु। क्रीड़ा मध्यम विश्व शांति, एकता और संस्कृति को प्रचार करने आम मूल उद्देश्य।
1: राज्य में चलित आर्थिक वर्षर प्रथम पर्याय पोषण अभियान ओजन उत्सव आरंभ हो। समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र में विभिन्न सहयोगी विभाग सहभागित आयोजन।

0: होनी रज, कहाँ होनी रज?
1: तुम्हारे दिल में।
0: तुम भी सिली, डैडी सुन लेंगे।
1: डैडी घर में नहीं है।
0: और नौकर?
1: उन सबको दिवाली की बख्शीश दे के भगा दिया है।
0: ओ, बड़े स्मार्ट हो गए हो।
1: हमने इस इश्क में क्या सीखा है, क्या पाया है?
0: वो तो मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम हो कहाँ?
1: कहाँ ना, तुम्हारे दिल में।
0: दिल में बहुत आराम कर लिया, अब जरा आंखों के सामने तो आइए जनाब।
1: ऐसी आंखों के सामने कैसे आ सकता हूँ?
0: कैसी है ये आंखें?

0: या ये एनपीएस संचय कौन?
1: एनपीएस संचय होउछि भारत सरकार प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा परिचालित एक पेंशन योजना जेउथिरे मात्र 250 टंका रे खाता खोली टंका जमा करथिले आपणकर वृद्धावस्था रे मासिक पेंशन मिलिबो। आज ही एनपीएस संचय रे जमा करबा आरंभ करंतु आउ निजो भविष्यत सुरक्षित करंतु। अधिक विवरण पई निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा निजो बैंक सहित जोगाजोग करंतु। एनपीएस संचय सहित भविष्यत पई प्रस्तुत रहंतु।
2: प्रचार करुछु कार्यक्रम जुबवाणी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
4: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसकी रिलेवेंसी क्या है।
3: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
4: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
3: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर

राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

0: अग्रेसर अति अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन द्व्यधिक द्विसहस्रतमात् परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा औषध रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमन्त्रिणा सानेता काइचित्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते। सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं संजातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा गतसायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं संकल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता रक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखांकितं यत् वर्तमान समये समग्रं विश्वम् आपूर्ति श्रृंखलावरोधैः व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां सुशासने व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावरेशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापार

0: परम् सुदृढ़ कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदास्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्तरूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतेः नवम समीक्षायां या च चत्वारिंशदधिकैकशतं मतैः अंगीकृता। तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदध्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते द्वाविंशत्यधिक अष्टशतोत्तर चतुस्सहस्र तीर्थयात्रिणां प्रथम समूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्रयात्रायां भागग्रहणाय जम्मू नगरम् आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूति वीबीजी रामजी अधिनियम विंशति पंचविंशति आजीविका सुनिश्चितताया ग्रामीणाजीविकाया सुदृढ़ीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृत्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांश भागेषु हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रे प्रवर्धितः। राष्ट्रिय राजधान्यां निम्नवृष्ट्या उष्ण आर्द्रस्थित्यां न्यूनता आगता। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिकादेशः द्व्यधिकद्विसहस्रतम वर्षानन्तरं प्रथमवारं नॉकआउट चरणे विजयं पंजीकृतवान्। बोस्निया हर्जेगोविना देशौ 2-0 पराजितवान्। बेल्जियम देशः अपि सेनेगल देशस्य उपरि अतिरिक्त समयस्य विजयेन राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
2: आपण कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्रर प्रचार कार्यक्रम विकास मन्त्र प्रयोजना विनय कुमार सामन्तराय।

श्रोता बंधु क्रीड़ा क्षेत्र को विश्व स्तर में व्यापक करने आम केंद्र सरकार नेक पदक्षेप भारतीय खिलाड़ी मान अनेक प्रोत्साहन राशि दि जाऊ क्रीड़ा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करा खिलाड़ी मान मनोबल को दृढ़ करा तेबे उपांत अंचल खेल विकास केन्द्र सरकार की योजना कार्यकारी होश्वस्तर ना करने खिलाड़ी मान प्रकार

0: श्रोता बंधु क्रीड़ा क्षेत्र को विश्व स्तर में व्यापक करने आम केंद्र सरकार नेक पदक्षेप भारतीय खिलाड़ी मान अनेक प्रोत्साहन राशि दि जाऊ क्रीड़ा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करा खिलाड़ी मान मनोबल को दृढ़ करा तेबे उपांत अंचल खेल विकास केन्द्र सरकार की योजना कार्यकारी हो विश्व स्तर में ना करने खिलाड़ी मान प्रकार सहायता जगै दि जाऊ क्रीड़ा भित्तिभूमि मजबूत द्वारा भारत किपरि विश्व स्तर में प्रसिद्धि लाभ करिछि विभिन्न योजना माध्यम खेल विकास दिगरे किपरि सरकार पदक्षेप नेइछंती एमिति किछि प्रसंग उपर आधारित आज आलोच्य विषय उपांत अंचल क्रीड़ार विकास पई केन्द्रीय योजना ए संपर्क में आलोचना करुछंती क्रीड़ा सांबादिका समीक्षा पटनायक
1: केंद्र सरकार एबे क्रीड़ा को बेसी प्राधान्य दउछन्ति कारण सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ रे निहाती भाव में युवक खिलाड़ी मान उत्साह युवक खिलाड़ी अंश ग्रहण निहाती भाव में गोटे भल समाज गढ़ी तोलिया रे साहय करुछि तेणु निहाती भाव में केन्द्र सरकार एबे विभिन्न स्कीम मान उपांत अंचल प्रयोग करुछन्ति जहाँकि सेतिमध्यरु प्रथम है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया स्कीम रे वर्तमान केन्द्र क्रीड़ा एवं युवा सेवा विभाग यहाँ विभिन्न अंचल अर्थात सारा भारत उपांत अंचल प्रयोग कर भारत विभिन्न राज्य प्रयोग कर सबुठ बड़ कथा है जे खेलो इंडिया रे जो माने भाग नियंती जो माने कि नुआ नुआ खेल आरंभ करते खेलो इंडिया रे भाग नियंती से किभली भाव में जातीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में केन्द्र हौ बा राज्य हौ से किभली भाव में लोकलोचन को आणव से गोटे प्रयास केन्द्र सरकार गोटे अभियान आरंभ करोटी स्तर में करशेषकर स्कूल खेलो इंडिया और कलेज स्तर में खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी स्तर में खेलो इंडिया को एवं प्राधान्य देखते केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषकर जो मैंने उपांत अंचल रोचा समाने विशेष सुविधा सुजोग पाई पारु न थिबारु तांको पई उपांत अंचल रे खेलो इंडिया रो सुविधा करिछंदी। खेलो इंडिया रे अनेक खिलाड़ी अंश ग्रहण करी समानंकर प्रतिभा प्रदर्शन करिबा स जातीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे सफलता हासिल करि पारछंदी। आ गुटे कथा हला केन्द्र सरकार साई माध्यम रे मध्य स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया माध्यम रे मध्य अनेक खिलाड़ी सृष्टि करि पारछंदी अनेक जातीय स्तर रे खिलाड़ी सृष्टि करबा फल रे आमे बड़ बड़ चंपियनशिप जमती की है राज्यगोष्ठी क्रीड़ा ओलंपिक एवं एशियन गेम भाई बड़ बड़ चंपियनशिप रे ए खेलो इंडिया रु खिलाड़ी माने बाहरी एवं सेठार मध्य भल प्रदर्शन करी भारत वर्षर ना जातीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंचाई पार्टी। सबुठ बड़ कथा है केन्द्र सरकार खाली से नुहे स्थायी और खेलो इंडिया छड़ा से वृत्तिर व्यवस्था करक्विपमेंट र्यवस्था करसबू नेला किभली भाव से प्रयोग करोच र्यवस्था कर खिलाड़ी को किभली प्रोत्साहन दिया केंद्र सरकार स्कीम माध्यम से विभिन्न खेल नियोजित करा एवं विभिन्न क्रीड़ा पुरस्कार सह से किभली भाव में जातीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विभिन्न कॉर्पोरेशन हौ बा प्राइवेट संस्था नहले क्रीड़ा विभाग जो विभाग रही जमती कि रेलवे कहतु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कथा कहतु विभिन्न बड़ बड़ संस्थान मध्य चाकरी सुविधा मिलुची एवं बीएससी भाया पदवी रहा केन्द्र सरकार एभली गोटे योजना करती भाव में एथु आम स्पष्ट जापारे जे आमर उपांत अंचल आदिवासी अधिष्ठित अंचल अनेक खिलाड़ी अच्छा जो मान पाखे प्रतिभा बहुत अच्छी किंतु आम लोकलोचन को आनी पारु नाहु से सठिक मार्ग रे जाई पारना जहाँ फल आमे भल खेलाड़ी पाई पारनु किंतु केंद्र सरकार खेलो इंडिया हो साई माध्यम रे हो जो खेलाड़ी को चयन करा जाउची से माने आज राज्य देश तथा विदेश रे जाई मध्य ओडिसा रो ना कोंतु बा विभिन्न स्टेट रो ना कोंतु करचंती एथि पई केंद्र सरकार संपूर्ण अर्थ प्रदान करचंती केन्द्र सरकार सहयोग में आज देश बहु खिलाड़ी जातीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ना कर आगक अनेक खिलाड़ी एपरिक 28 ओलंपिक एकाधिक खिलाड़ी अंश ग्रहण करजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते बहुत आशा रही किभली भाव में अनेक खिलाड़ी सृष्टि कर शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षेत्र में किभली युवक मैंने निजी नियोजित करेंगे सुस्थ समाज गठन केंद्र सरकार विभिन्न पदक्षेप मैंने हाथ को नौ एमती देखा गले चारि पांच वर्ष मध्य क्रीड़ा क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करीरज चोप्रा जेकि ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ
1: କମ୍ପ୍ରିମିୟମ ଜ୍ୟାଦା ବୋନସ ଅପନୋ କେ ଲିଏ ସବସେ ସହି ଆରପିଏଲଆଇ इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: ଠିକ ସମୟରେ ବୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଅମଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଆନ୍ତୁ।
1: ଚାଷ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଭଲ କିଏ ଜାଣିଛି ବିହନ ଠିକ ସମୟରେ ବୁଣା ଯାଇ ସାରିଛି।
0: ମୁଁ ଫସଲ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ଏନପିଏସ ସଞ୍ଚୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି।
1: ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏନପିଏସ ସଞ୍ଚୟ କଣ?
0: एनपीएस संचय होउछि भारत सरकारको प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा परिचालित एक पेंशन योजना जेउथिरे मात्र 250 टंकारे खाता खोली टंका जमा करथिले आपणकर वृद्धावस्थारे मासिक पेंशन मिलिबो। आजि ही एनपीएस संचयरे जमा करबा आरंभ करन्तु आउ निजो भविष्यत सुरक्षित करन्तु। अधिक विवरण पाइ निकटस्थ जनसेवा केन्द्र किंबा निजो बैंक सहित जोगाजोग करन्तु। एनपीएस संचय सहित भविष्यत पाइ प्रस्तुत रहन्तु।
2: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଶୈଳଭମା ମହାପାତ୍ର।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी

0: पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य

0: के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली दिल्ली में

0: अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said,

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी देखिये, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाए। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है। क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती है और उसमें एक मल्टीप्रोंग्ड अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
1: जी,
2: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है और उसका नतीजा यही रहा कि करीब

0: जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई, जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
0: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया।

0: बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
1: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डो मोर क्रो, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सके बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर प्रो, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
0: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, तो आंकड़े क्या बताते हैं? अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है, और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है, वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा?
1: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत वर्षों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है, और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि वह काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है, और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस वक्त, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ एक इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ, और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफील्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
0: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
1: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलते हैं
0: जी।
1: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है

0: जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ, साथ में जो टेक्नोलॉजी है जैसे आपने कहा कि जब मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है आपके ड्रिप इरिगेशन है
1: जी
0: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम मैं कहूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं उससे बहुत कम पानी में कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें या उससे भी कम होता है लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे कि राजस्थान है गुजरात का कुछ हिस्सा है मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक्स थे जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसीजन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लस सोलर पंप्स के जरिए छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और
1: जी
0: उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर डो मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
1: जी
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स है उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उसमें बड़े पैमाने पर अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें किस

0: राज्य की क्या स्कीम है,
1: जी
0: कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।
1: जी और हरवीर जी, यहाँ ये भी बताते चलें कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: शंकर, अरे शंकर, कौन सोचना नहीं मा? शंकर, तू बसी बसी ये ढुलो था मुंह हाथुड़ी पिटी पिटी ना आंच।
1: आना बो, बस जा टिके। जिम्ते ठंडा पवन बहुत ना। देह कोलो मर जाऊँ ची। ने, बड़ी धरा?
0: हाँ, दलो दलो, दलो खंडे। ना आओ हबनी शंकर जहाँ किसी गोटा फैसला करने को पड़ो
1: कि फैसला करू
0: राति बिकाली डिस्टर्ट सिंगल पक्षे कम करवा
1: ग्यांगेर तो ना लिखेचु कम न कर चारा कौन
0: ताली आम जीवन को बिकी ना कौन से इंजीनियर रॉबर्टसन साइब लोक ताकू डर भय न थी पारे हेले आमे
1: तू भी गोटा गदंग पी कौ कि कम न कले आमको मजूर दब किए आ मजूरी न मिलने आम संसार चलो कमी
0: मु देखु तू गोटे महाछेरुआ कि आमे समस्त जी रबड़सन पाखे आपत्ति करवा से आम कथा रखिबन
1: ऊपर परा अरड़ अच्छी ये पंदर दिन भितर लाइन कम सर से तो रात दिन कम लगी रबड़सन कहले कौन टे
0: तू कर बाबा मुझे एक तो थंडा राति चारिड़े किटी किटी अंधार टेसन आलोक को अनिशा कर पेट्रोल मक्स बती को निघार कि जहाँ कम करने कथा जानु तो ये जगह टा केमी का
1: हौ है तेज आम कम बंद करवा कहीं रबड़सन आसिले सब बुझे कहवा ये जगह भल नुह ये रात अजाए कम करवा ठीक हेनी से आम कथा शुणला तो भल ना उपर लिखा
0: ना ना से लेखालेखी पाठ सब रखीदे था आज साहब आसे मुझे सफा सफा कहीदेवी एटि रात अजाए कम कर मोदे हो पार
1: अरे ये नब देख लु रबड़सन आस चल चल अरे बसिक विरक्त हब दे हाथा देलु
2: अरे नवगन
0: सर
2: कमे ए फ्लास्क ने से आगो चा दुकान रू मोप चा नहीं आ बड़ टायर्ड लगुच जा डोंट यू हियर मी जा
0: सर सेठी की
2: यस अगर से दुकान खुला अच्छी गो क्विकली
0: नहीं सर मुझे सेठी की जीवनी
2: व्हाट जीवनी कहेंगे
0: सर सर कथा कौन कि से जगह भल नुह राति अंधार सेठी जीवाटा
2: यूज़लेस अरे अंधार कौन स्टेशन लाइट तो दिशुची रेल लाइन उपरे चल चली गले पाख हबो
0: सही तो मुस्कुल सर जहाँ दुकान जगह टा अंधारुआ तो डर मारिबो
2: फियर अरे डर कौन हा अरे सेठी कौन बाघ भालू अछंती
0: आपन नुवा ही आछंती सर आपन किछि जानि नाहंती राति बिकाली से चा दुकान को जीवाटा भल नहु
2: कौन सब बाजे बकुचु दुकान तो पर्यंत खोला अछि
1: आपण मिछ मानिबे सर हेले से डिस्टेंट सिंगल टोपी चा दुकान को मोटे जाई होबनी
2: ह डिस्टेंट सिग्नल
0: हां सर लोके कहते सेठी काले गोटा भूत अछि
2: भूत यू मीन घोस्ट ह

0: हेले साहब
1: व्हाट
0: चाहने आपन पुनी से सिंगल टॉपिक रे जिबे
2: यस व्हाई नॉट
1: जेमिति आसीथिले ठीक सेमिति फेरि जिबे बुझिला ए सब खाली तम मनर भय भूत भूत किछि नै
2: अरे आकाश रे ट्विंकलिंग स्टार्स
1: बाट परिष्कार जणा जाउछि आ ता छोडा आई एम ए रेलवे इंजीनियर रेल लाइन ऊपर चालिवार अभ्यास अछि
2: डर कोन
0: तथापि साहब गाँव भीतर दे टेशन को चली गले भल हंता इते राती रे
1: एते राती रे तमे तो कुनी दुकान ओपन करी बसिछ डिस्टेंस सिग्नल ता तमो दुकान पाखरु हार्डली 50 यार्ड्स दूर हबो
0: पेटो पटना कथा राती अधरे दुकान न खोल रे आउ टिकक पर व्यापारी माने आसी चा पई लाइन लगेबे
1: व्यापारी यू मीन बिजनेसमैन
0: ए आज्ञा आलू व्यापारी राती पाइले बुझनी दूर गाँव को जिबे त सेइति पई राती 12टा पर चुली रे आंच पके को पडुची नइले आज्ञा मो जीवन कोनो भय नै हेले कोन करबी बेउसा नकले पिला कुटुंब चलिबे केमिति मो कथा मानंतु साहब आपण ए गां गोहिरि देई टेशन को चली जांतु परिष्कार बाटो पडछि खाली टिके जहा दूर
1: नो नो इट्स ऑलरेडी लेट तमे व्यस्त होनि आई कैन सेफली क्रॉस द डिस्टेंस सिग्नल
0: साहब कोन कहले सेई सिंगल तो भारी भयानक सेई खुंटडा आ गया
1: अच्छा अच्छा हो चारो केते पैसा आला
0: चारिटा चाकू

0: टंका कोड़ी
1: अलग नियो
0: आगा आपण पुनी सही बाटे
1: ओ श्योर
0: मल्ला हे साइबटा भूतटा ताकु कंचा चोबई खाई जीव ह मरु
2: मिस्टर रॉबर्टसन मिस्टर रॉबर्टसन
0: के
2: वेट मिस्टर रॉबर्टसन ठिया हुआ
0: के तमे
2: भय करो ना आई शैल डू नो हार्म टू यू
0: बट हु आर यू
2: मुं तमरो अपरिचित प्लीज मिस्टर रॉबर्टसन मते कपे चा दे जा अनेक वर्ष हब चा खाइनी
0: बट आई से हु आर यू
2: तमे मते चिन्नी पारिबनी रॉबर्टसन मुं ग्रीन मेल ड्राइवर ग्रीन
0: किंतु तमे कोठी मु तमक देखि पाउनी प्लीज कम टू माय फ्रंट व्हाट्स दैट एमिति हसुचो काहिकि
2: तम कथा सुनि मते हस मारला रॉबर्टसन
0: बट व्हाई
2: डोंट बी अफ्रेड कहिचि त मु तमरो किछि क्षति करिबिनी
0: नो नॉट एट ऑल मु आदो बिव्रत नै खाली जानिबा को चाहे तमे काहे कि मु सामना को आसुना
2: बट आई एम सो सॉरी रॉबर्टसन मु तम सामना को जाई पारिबि नै
0: तेबे मु चाह देबि काहा को टू हुम एंड हाउ
2: सही तो ट्रेजेडी रॉबर्टसन मु तम सामना को जाई परंती इच्छा कले तमे मते देखि भी परंत बट
0: को टेल मी व्हाई डू यू स्टॉप
2: आई एम हेडलेस
0: हां को कहलो हेडलेस
2: एस रॉबर्टसन मोर ए विकलांग रूप देखि अनेक भय पाइचंती सेति पाई मोर साहस होउनी
0: नो नो मिस्टर ग्रीन प्लीज कम टू माय फ्रंट मते देखा दियो तमरो कबंदटा देखियोकु मोर भारी कौतूहल होउची
2: आश्चर्य तमे केमिति मते देखिबाकु इच्छा प्रकाश करूच आज की 15 वर्ष हबो
0: आई नो ग्रीन यागरु तम विषय रे अनेक फैंटास्टिक तथ्य मो कान को आछि बट यू सी आई डोंट बिलीव इट तमे ऑक्लेस रे मो सामने को आसी पारो
2: सो रॉबर्टसन हियर आई एम मु सही मेल ड्राइवर मिस्टर ग्रीन
0: स्ट्रेंज खाली कुटाई कबंध देहरे नेळी कमीज आउ खाकी पैंट
2: कौन भावुच रॉबर्टसन विश्वास होनी
0: तेबे मते बड़ आश्चर्य लागुची ग्रीन मुंडहीन तमर ए कबंध मनीष परी कथा कहू छी केमिति
2: लॉर्ड्स ग्रेस मिस्टर रॉबर्टसन वे तो मोर ए शिरहीन पिंड रे गोटाए ऐश्वरिक शक्ति भरी जाइछि हेले दुनिया रो कोनोसी जीवंत मनीष ए कथा विश्वास करि पारु नाहंती सेई जाहा मोर दुख
0: बट मिस्टर ग्रीन तमे चा खाइबो केमिति
2: मु ठीक चा खाई परबी रॉबर्टसन तमे खाली फ्लास्क कवर रे ढाली चाटा तळे रखि दियो ठीक जियंता मनीष परी मु चा पिउची देखिबो

0: इतनी पोली दो ही चिकाई की।
1: I was just thinking to ask you, इतने बरस धरी तमे एमिती रहस्यमय भावरे ए सिग्नल पाखरे घुरी बुलुचो काहे की?
0: से गोटाए दुख भरा इतिहास रो बर्सन, तमे होच प्रथम व्यक्ति जे आज मो जीवन रो सही रहस्य उद्घाटन करबा को चाहूच। आई एम रियली सो ग्रेटफुल टू यू। बहु वर्ष तले मु थिली जने मेल ड्राइवर, प्रतिदिन बॉम्बे मेल नहीं मुई रूट जीवा आसवा करूली। घरे मोर सुंदर स्त्री हेलेन, रियली सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। आमर दुई वर्षर विवाहित जीवन भितरे मु थिली ता जीवनर एकमात्र बंधु आ प्रेमिक। ड्राइवर चाकरी बेले बेले कंटिन्यूअसली नाइट ड्यूटी करिया को पड़े। से दिन दीर्घ तीन राती बाहर रहिबा परे मु फेरली घर को। ए दीर्घ तीन रातिर एकांत बास मत जेतिके अथय करथिला ताठु बेसी विव्रत करथिला मोर प्रियतमा पत्नी हेलेन को। से दिन घर को फेरी देखिली हेलेन कांदुची। मत देखिबा खणी से बिकल हे कहि पकेला,
2: ओ डार्लिंग, वेयर आर यू फॉर द लास्ट थ्री नाइट्स? घरे मु एका रात्रि अंधार भितरे केते जे छटफट होछि।
3: डोंट क्राई मे स्वीटी, तमे तो जानो देड़ दिन विश्राम परे तीन दिन हमकु नाइट ड्यूटी करियो खे। आफ्टर ऑल वी आर ट्रेन ड्राइवर्स, हम चाकी तो सेमती, तमे निजको एडजस्ट करियो चेष्टा कर हेलेन।
2: बट हाउ, सारा राति बिछना उपरे मु एका पड़ी रहूछि, पदे कथा कहबा को पाखरे तुमे न, हाउ कैन आई रिमेन अलोन? जदि मोर किछ हे जाय तमे तो नथिबो मते देखिबा को।
3: गॉड इज ग्रेट माय डार्लिंग, मुसिना तम पाखे न थाए तेबे मोर अदृश्य आत्मा तम चारिपटे घुरी बुलु थाए, केही तमोर कोनसी खेती करि परिबनी।
2: तुमे काहे कि ऑलवेज नाइट ड्यूटी करछो?
3: डोंट बी चाइल्डिश हेलेन, ड्यूटी अलर्ट करियो तो मोहत नै, ताछडा नाइट ड्यूटी परे जो दीर्घ डेढ़ दिनर विश्राम एटा कोन बेसी प्लेजरेबल नहि।
2: नो डियर, ए डेढ़ दिन भितरे गुटियो बुली तो राति।
3: सो व्हाट, तमोर सानिध्य मिलिबो त राति आउ दिनर डिफरेंस खोजि लाबो कोन?
2: तमे बुझि परिबनी डियर, सकाळर सूर्यालोक अपेक्षा राति आकाशर अंधकार बेसी बेसी उन्मत्त करे मते।
3: इज इट? किंतु काहे तमे पाखे थिले मु तो सबबेले उन्मत्त हे उठे डालिंग, से राति हो बा दिन हो।
2: हाय नॉट इन हाय,
3: सत कहुछि हेलेन, एई त मो हाथ मुठार रहिछि तमर नरम पापुलीटा छाळी जाइछि, हेले मु अनुभव करछि तमर से घरमाक्त पापुली जेमते मो देह सारा बिजुली रो उष्णता भरी दोची। आई गेट एक्साइटेड डार्लिंग, बिलीव मी।
2: ग्रीन, छाड़ो छाड़ो ना प्लीज।
3: कह, आउ मन दुख करिबनी आउ कांदिबनी, टेल मी।
2: सत कहुछि डियर, तुम अनुपस्थिति बेले बेले मो मन रे अनेक आशंका भरी दिए, सारा राति बेड उपरे मु छटपट हुए, पलकहीन आखिरे चाहिँ रहे आकाशर तारा मानको, मते लागे सत्यबा सेमाने मोर असहाय तारुण को विद्रूप करछन्ति।
3: हेलेन,
2: सत कहुछि ग्रीन, एनी संगत हम सोही परु नै।
3: बट व्हाट एल्स कुड आई डू डार्लिंग, ड्यूटी करछि जेतेबेले।
2: ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, अजे तुमे एक ड्यूटी करछो
3: मो परे, अन्य ड्राइवर माने भी तो तीन दिन नाइट ड्यूटी करछन्ति। हेलेन,
2: करथबे हेले समान कर मिसेस माने मो भई एकर नथिबे।
3: कौन तुम कहो छ हेलेन?
2: ग्रीन ग्रीन, मो मदर हबा को चाहे।
3: हेलेन
2: प्लीज प्लीज मेक मी अ मदर। हेलेन मे मदर,
3: किंतु ना हेलेन, इट इज नॉट पॉसिबल नाउ।
2: बट व्हाई?
3: तुम ठीक बुझे चेष्टा कर डार्लिंग, जौवनर परिसर खूब व्यापक, इतने शीघ्र मुता को संकुचित कर पारिबिनी।
2: आई अंडरस्टैंड, तुम्हें ताले
3: ना हेलेन, बिलीव मी, मोर अन्य कौनसी उद्देश्य नहीं। ऑल दैट आई विश, आमे आउ किछ वर्ष आमर वेडिंग सेरेमनी को एकांत भावरे सेलिब्रेट करिबा।
2: ऑलराइट, मु तुम सहित जुक्ति करबा को चाहनी, एज यू लाइक इट।
3: लिसन, क्वाड जाउ छ,
4: तुम पई ब्रेकफास्ट रेडी करबे।
3: ओके,
5: गुड मॉर्निंग ग्रीन।

0: Hello, Taylor. Good morning. Come in. Ah, Bhitruka.
1: Boss.
0: Tota, do dekhane?
1: Confuted thilu.
2: You are very correct.
1: Yesterday mujhe chhotu feruchi.
0: Helen. Helen.
3: Come in.
1: Good morning, Mrs. Green.
3: Oh, Taylor. Tomi kete bade?
1: Eita, just a silly.
0: Helen, Taylor pai kichi breakfast.
1: No. Mu khai kasthi.
3: Well, मु कॉफी आनु छे
0: सो आउ सब खबर कौन
1: खबर खबर तू कहिस ना मु त 10 दिन छुट्टी थिली
0: अच्छा टेलर वन थिंग आमरो ड्यूटी अलॉटमेंट तू करछु ना
1: यस व्हाई
0: ना माने ए कंटीन्यूअस नाइट ड्यूटी
1: व्हाट इज टू बी डन थारे मेल ले जो पर तो फिर जो को 3 दिन लागु छे
0: हां त अवश्य तबे
1: काहे के मिसेस को छड़ी पर कष्ट होच ना
0: ओबियस अरे तू तो बैचलर अनुभव करियो कंती
1: अरे अरे आई एम सो सॉरी तबे ड्यूटी तो परिवर्तन करा जे परबनी यस वन थिंग यू कैन डू
0: कौन
1: यू कैन कीप ए वॉच फॉर हर
0: वॉच
1: हां आई मीन तोर के रिलेटिव
0: ओह नॉट टेल पॉसिबल नहीं
1: ताले आउ कोन करा जीवो
0: मु भाबु छी अच्छा टेलर तोर तो सब दिन जनरल शिफ्ट तू जदी मो एब्सेंस रे टिके हेलेन को कंपनी दियंतु
1: मु
0: यस व्हाई नॉट
1: किंतु
3: टेलर तुम्हारो कॉफी
1: थैंक यू
3: व्हाट हैपेंड ग्रीन एमिते गुम हे बस छ ब्रेकफास्ट थन रह गेलनी खाइ ल कहि के
1: से गोटा डिलीवर पड़ जाई छी
3: कोन हे छी
0: ना माने अच्छा हेलेन मु राती ड्यूटी कला बेले तमे एक रहे को भय करछ ना
3: सी टेलर तुम फ्रेंड का मुंडो काम करुनि बोधे अच्छा तुम्हें कहले टेलर पूरा तीनी राती से बाहर रहबे घरे मु एकुटिया डर माडी बनी
0: मु तो सही कथा कहू छी मो एब्सेंस रे टेलर जदी
3: ग्रीन
0: कोन हला
3: ना
0: अरे अरे चली जाउ छु कोडे सुन
1: स्ट्रेंज तो नाटा सुनी हेलेनिम से चली गला कई तू भी गोटा निहते इडियट अरे जेतेल से तोर वाइफ तो एब्सेंस रे अन्य पुरुषों को से वेलकम करिबे केमती
0: डोंट टॉक रॉट यू आर माय बुजम फ्रेंड मो एब्सेंस रे मो वाइफ रो केयर नबा जे तो ड्यूटी
1: दे ग्रीन समस्त को मनर भावना और चिंता धारा केबे समान हे पारे ना मिसेस ग्रीन जदी कुंठा बोध करथंती तू तंको फोर्स करिबाटा सुंदर होबने
0: अच्छा बाबा लीव इट हां सकल चली असल जे मो पखर किछ काम थिला
1: यस ब्रदर जो काम पे आसी थिली भबुची सेटा हे परिबने
0: माने
1: आसी थिली बांस कथा त कहबाकू पुअर फेलो हटात त देह खराब हे गला आज से ड्यूटी करि परिबनी आज से त रिलीव कर थांदा बट व्हाट आई सी बर्थन त तो कहि के चलाबनी
0: त माने तू कहू छु मु अगेन आज नाइट मेल रे
1: एग्जैक्टली किंतु टिको का अगुर इठी जाय घटी गला या पर आज तो अनुपस्थित अजता हम भीतर गोटा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करबो एनीवे मु जाउ छी जैकब को रिक्वेस्ट करबी देखा जाउ से कोन कहू छी
0: मोर किछ आपत्ति नथला टेलर आफ्टर ऑल बंस मोर कॉलिंग बट सी हेलेन जेमते
1: ऑल राइट मु तो तव फोर्स करूनी अच्छा लेट मी गो गुड बाय
0: बाय
3: टेलर कोन चली गले तुमर पुनी कोन हला
0: ना
3: जाने मते तुम खराब भाबी थबो हेले तुमर ठीके कॉमन सेंस नहीं तमो एब्सेंस रे टेलर आसी मते कंपनी देबे डज इट लुक नाइस
0: टेलर तुमर अपरिचित न हेलेन ताछड़ा ता स्वभाव तमे भलो भाबे जानछो ही इज अ फाइन मैन तमर तो संदेह करियो कोनो से कारण नै आफ्टर ऑल ही इज आवर फैमिली फ्रेंड
3: मुसे कथा कहो नै
0: देन काहे कि तबे तार कंपनी तमर असत जाउ छी कैन यू नॉट ट्रस्ट हिम
3: टेलर तमर बंधु तमो एब्सेंस रे मोर सुरक्षा करबा तंगर ड्यूटी तबे से सिना किछि समय पे मते कंपनी देबे किंतु मो सारा रातिर निसंगता कोनो
0: हेलेन
3: ना तुम्हें मो मन कथा बुझी पारिबनि ठीक अछि मते छड़ी दूर रहिबा को जे तुमर एते इच्छा तबे
0: हेलेन प्लीज डार्लिंग मो अवस्था ठीक बुझे को चेष्टा कर आज टेलर कहीं के आस्थला जानि छ
3: कहीं के
0: मो रिलीवर हटा सिक कर छी मते तार ड्यूटी न कहे पे
3: व्हाट आज पुनी तुम्हें नाइट ड्यूटी करिबा
0: ओ नो डियर तुम्हें व्यस्त हो छ कहीं के हमर आलोचना सुनिया परे टेलर अन्य जन को ड्यूटी अलर्ट करिया कथा कहला
3: ओ लॉर्ड राइट
4: Let us stop here, Robertson. आज ये तिकी था।
0: But why?
4: You see, राती पाहिवा को अब बेसी देरी ना

0: The dawn is approaching. Dinner alo, MRT chhimba purboru, mote chali jivak podi bodi.
1: Well, Green, dinner alo ko tumhe kono bhoy karo? Mu shunichi, rati 12ta bajiba pore jai tumhe aso? Kaike?
0: Gotai sira bihina kobondhamu. Ratira andhakar hi mor ekmatra sahachara. Dinner alo ko mor bhari bhoy. Achha. Let me go, Robertson. But mo pai cha aniwa ku bhuli jibani. Kali thik ei samay re mu tamaku eithi apekkha karithibi. Okay, goodbye.
2: Sankar sir. Hey, Sankar sir. Hey, Sankar sir.
3: Shut up!
2: Don't howl like dogs. Sankar-san.
3: Sir!
2: Are you going to throw it away? Come here, Nabagana. What is it?
3: Sir, sir, I'm...
2: Hey, idiot. You're going to throw it away. Look, look. I'm not dead, Bonchichi. You're going to throw it away. Do you understand? अन्या चाय खाओ
3: सर सर आपनो से सिंगल टोपी जाए चाने आसी परले हमें तो कलपना कर पन्नु
2: बुझिलो शंकरसन ए सब खाली तम मनर भय घोस फोस किछि नाही सेठी डिस्टेंस सिग्नल ता सेमिति ठिया आइछि
1: हेले जानो तमे सब जहा को घोस बोली कहउछो
2: मु ता संगे रे पूरा 2 घंटा कथावार्ता करि फेरिछि
3: सर
2: यस बिलीव मी सी घोस टू ए तमर परी गुटे मनीष हेले ता मुंडो नाही
3: कोन कहले सर तार मुंडो नाही खाली देहटा से आपण संगे कथा कहले सर
2: ओ श्योर खाली कथा कहलानी मोटू चा मागी पीला ठीक आमे जेमिति पियु
3: ताहेले सारे से निश्चय गोटाय पेत नहले मुंडो नथाय केमिति चा पी थांता
1: हो
2: सेई तो मिस्ट्री शंकरसन मो आखी आगर एका निश्वास रे से चा तक ढोकि देला
3: से कोन सब कहला सर
2: ओ ता जीवन रो ट्रेजेडी
3: सर
2: अ तमे से सब बुझी पारिबनी शंकरसन 15 वर्ष तळे से जने ट्रेन ड्राइवर थिला ना तार ग्रीन
3: ट्रेन ड्राइवर तेबे सारे निश्चय से अकाल रे मरि जाई छी लोके कहते सेहि ते में ता आत्माटा कोडी घुरी बुलु छी
2: एनीवे आज राती रे भी मु ता पई चा नै जीवी त माने आसीबो ता संग कथा कहिबो
3: सर आमे
2: यस
3: नाई सर जानु जानु आमे मरियो को सेठी के जीव नै सर
2: अरे धत काई अरे मु तो मरि गलिनी अरे देखिबो ता मुंडहीन कबंद आ सुनिबो ता जीवन रो दुख भरा कहानी
3: नाई सर अमर से कलिजा नाई आपण जिबे तो जानतु हम को छुट्टी दे दियंतु सर आज राती रे हम गा रे रामलीला हो
2: ऑल राइट तमा छुट्टी मंजूर
3: सर आपण कोन आज राती रे पूर्ण तापा को जिबे
2: यस मु ताको वर्ड दे छी जिबा को पड़िबो ओ वेल सकाळ हे आसला लेट मी गो बाय

0: What's the matter? तमे ते सकालु
1: वर्तमान स्टेशन रे फिरुची स्टेशन रे ग्रीन संगे देखाला से मते कहिला आज से फेरफेर अनेक देरी हबो वर्कशॉप रे कोन काम अछि कहिला तुमको जणे देबो
0: हे इज लाइक दैट तबे लंच को आसीबे तो
1: नो होप आसी न करे अच्छा लेट मी गो
0: से कोन आसीलो चा कबे न खाइ चले जेबो कम इन टेक योर सीट
1: थैंक यू
0: मु संगे संगे चाउन छी
1: Yeah. Thank you.
0: Well, Taylor, तुम फ्रेंड को तो देखु छो नाइट ड्यूटी कला परे भी से केमिति बाहर रह जाउ चंती रियली एका काम बड़ो बोर हो छी तमे इनकी रेगुलर आसीबो
1: स्ट्रेंज
0: काहे के कोन हिला
1: ना मु भाबु छी मिसेस ग्रीन जाउ के तो भय करंती से केमिति हस्बैंड रे एब्सेंस रे ताको स्वागत करिवे
0: आ ऐसी तमे से दिन खूब रागी जाइथले
1: नो नो नॉट एट ऑल तबे ग्रीन मोर अंतरंग ता प्रति मोर किछ कर्तव्य अछि सेहि दृष्टि रु
0: आई एम सो सॉरी टेलर मो बिहेवियर तुमको हर्ट करि छि किंतु टेलर मो रिक्वेस्ट कर छि टेक इट इजी
1: अरे ना ना मो मोटे माइंड कनि मिसेस ग्रीन तबे ग्रीन को टिक बुझुक चेष्टा कर भलो हो ही इज क्वाइट फ्री एंड फ्रैंक
0: तुमे जा को टेलर तुमे बंधु जन क जे घर अपेक्षा ड्यूटी के बड़ बली भावंती एक कथा तुम्हें अस्वीकार करि परबनी ता हि नथले मते एक कुटिया छड़ी राती राती बाहर रहिबा को से पसंद करनु थांते
1: तमे अननेसेसरी ताकु दोसो दोच मिसेस ग्रीन प्रकृतर तमे जा भौछ सेटा सतन है एई तो मुनि जे समान को ड्यूटी अलॉटमेंट करबे दायित्व रछि एई 6 मास बसे एक्सप्रेस ट्रेन मेल को जाइछि अच्छा ग्रीन प्रॉस्पर करू तमको चाहना एई में जे ड्यूटी रे केते सिंसियर होबक पड़िबो
0: मु तो केबे बाथा देने बट यू सी होल नाइट गाड़ी चलेबा परे कोन एमिति अर्जेंट काम पड़ला जे से वर्कशॉप रे अटकी गले ड्यूटी करबो बोली कोन निजे देह को जगिबनी से गला बेले केते रिक्वेस्ट करथले आज ठीके चंचल फेरबा को आमी शॉपिंग को जाई थांतु आउ दे दिन परे मोर पाठे
1: आई सी सेठी पे ग्रीन ऊपर इतरा को
0: ना टेलर तांको ऊपर रागीबार अधिकार मोर नाही वाइफ रो मन बुझिबा को जे चाहतिनी
1: नो मिसेस ग्रीन बंधु भाव में मुतक जैसे जाने आई थिंक हि इज नॉट सो क्रुएल किंतु कौन करिबो पुअर चैप ड्यूटी रे सामान्य खिलाफ करियो को से चाहे ना एनीवे तमे व्यस्त होनी मु बर्तन जे तकु रिमाइंड कर दोची वे तो से भूली जाई थी
0: ना ना थाओ तुम तको किछ कहबनी हि मे टेक इट अदरवाइज
1: अच्छा उठु चित्र
0: किंतु देखो डे आफ्टर टुमारो मोर बर्थडे को आसीबा को भूली जबनी
1: ओके बाय
0: बाय

0: What happened, Buns? कौन है ले?
1: खूब सुखले दूसरा? हम्म।
2: ओ, मिस्टर ग्रीन।
1: कौन ही ची? अरुचिक?
2: ना, किसी नहीं।
1: मुंह तमुंह खुजी-खुजी ठीक है सिली। Go to the engine. Time ही जाई ची।
2: हाँ? हाँ। तभी, मिस्टर ग्रीन, कौन कॉल भी कहिला?
1: कौन है ले?
2: My mother is serious.
1: I see.
2: जाने ना कितने बड़े कौन होगा? I think she will have punchable.
1: Oh, Buns, please don't cry. धज्जा थरा. बेस्ट तले कौन होगा?
2: Duty को ऐसे ले बड़े सिमत मारा कर थला. But
0: why do you worry? तुम घर उजा. Mother को attend करो.
2: किधर? मोर duty? मुझे तुमको relief करीबा का था.
0: Well, मुंह तुम duty take up करो जी. Go home.
3: Buns, तुम्हें तभी ये परचंत इंजन को जाइना इट इस ऑलरेडी रेड
0: एक तो टेलर ब्रदर लेट हिम गो होम ता मदर भारी सीरियस ताटी उठे मुंह करीबी
1: तू
0: यस प्लीज तब जीवक दे
3: किंतु किंतु मिसेस ग्रीन जी तो अपेक्षा करती हुई आज ही पता कर बाद दे सिडनी से मत कौन थले कता
0: ओ तबे
2: कम मिस्टर ग्रीन कमें घर को या जहाँ मैं भाग के रहता हूँ
0: ना ना ना ताकिम थो घर तो मदर सीरियस ये अवस्था तुम ड्यूटी करीबो
1: टेलर प्लीज डू मी फेवर
0: क्वार्टर को जाई हेलेन को जानी दबू बंस रे मदर खूब सीरियस से तंग देखे हो जीवो उन चल ले बंस यू प्लीज गो होम
3: किंतु तक बर्थडे
0: बर्थडे अपेक्षा मनीष रे जीवन टा बड़ा माय डियर फ्रेंड तू हेलेन को टिके पूछे दबू
3: बट मिस

0: Jenny. Jenny.
1: Oh, darling. Tama feri asla?
0: Yes, Jenny.
1: Kintu tama duty?
0: Mr. Green Gorchi.
1: Oh, my hearty thanks to him.
0: Tama jana Jenny? Kete coster mu escape kori asche? Mata riti mat gora drama kori padla Green agre.
1: Drama?
0: Yes, darling. Rest shade re bossi dekhili. Bada besto hai Green mata khoji khoji asche. Taku dekhi bakhi ni mu kandi pakhili. Kahili, my mother is serious. Please help me.
1: Tapare?
0: मुझे जाने ग्रीन इज अ गॉडली मैन कहा दुख से सही पारे ना संगे संगे कहला बंस तुम घर को जाओ मु तुम ड्यूटी टेक अप कर छी
1: ओ शो काइंड ऑफ हिम
0: जेनी मम्मी कौन कर छी
1: सोई चंती
0: तमर पुनी कौन हैला एमति ग्रेव हे गले जे
1: ना
0: प्लीज जेनी कौन ही छे कुहो ना
1: केते दिन तुम एमति एक्टिंग करबो बंस
0: एक्टिंग व्हाट यू मीन
1: केबे मदर सीरियस तो केबे वाइफ सीरियस अच्छा तुम चाकरी छाड़ी दे ना
0: छाड़ी देवी
1: तमे तो जाने भलो मैकेनिक वर्कशॉप रे काम करि परिबो
0: इट्स नॉट सो इजी डार्लिंग हठात अन्न चाकरी पाइबा इते सहज नै अंडरस्टैंड
1: किंतु मु तमे मदर का सेवा करि परिबिनी आई एम नॉट अकस्टम्ड
0: ओ बुझले किते तमे घर रा हाउसवाइफ मो मदर रो ओल्ड एज रे तमे तारे देखा सुना करबनी त की करबो
1: काहे कि मु कोन तमे घर रे आया है छी कि
0: जेने
1: वेडिंग नाइट रे तमने त कोन कहितला भूली गेलो
0: हो तमे से कथा ए पर्यंत फुली न त हेले केतु छेनी तमे त देखु छ थार अवस्था आ केतु दिन ओसे बंचिबो तार सेवा कले शी विल ब्लेस यू जेनी
1: मोर से ब्लेसिंग्स वर्क करनी तमे कण जानी ना माय फादर इज एन इंजीनियर मो त कर ओनली डॉक्टर केते कंफर्ट्स केते लग्जरी भीतर में बड़ी छी अत जेठी आई एम लेस देन अ सर्वेंट
0: जेनी प्लीज स्टॉप इट
1: ना मो तमे को साफ साफ कह दउ छी मो तमे मदन को अटेंड करि परिबिनी तमे जने आया रखो और इस मते हम घर नहीं छोड़ दिया
0: जेनी लिसन
1: नो मो किछी करबिनी
0: जेनी प्लीज

0: तुम्हें कौन एका सिंसियर वर्कर तुम्हें ड्यूटी न कले ट्रेन चलाचल कौन बंद हो जिते रिक्वेस्ट कले भी केवे कौन से दिन कौन से फंक्शन को मत नहीं जाइन कौन से दिन क्लब पार्टी को मत सांगे नहीं ना कौन से दिन मो मन कथा बुझा चेष्टा करना सारा दिन सारा रात शून्य घर टा भितर मु पड़ी रहुछि केबे कौन से दिन इच्छा करी मत तुम सानिध्य दे मुझे गोटे मनीष मोर भी किसी आशा अच्छी डिजायर अच्छी एक तुम कौन के चिंता कर तुम कौन जाओ सारा जीवन एमती निसंगता भितर मु कष्ट पाए जंत्रणा पाए ड्यूटी बहाना करी तुम्हें मोठू दूरे रोच कहीं स्त्री हिसाब से तुमठू कणी चाहे स्नेह आदर पाइबार अधिकार कौन मोर ना टेल मी टेल मी
1: प्लीज प्लीज माय डियर कंदनी व्हाट फुल इज एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज आओ यार पुनरावृत्ति तो बनी
2: ग्रीन व्हाई आर यू साइलेंट को कौन है लता परे
3: सही घटना परे दिने मु ड्यूटी के बाहर छी हठात तेल को आसीबार देखिली से दिन बड़ निर्दय भाव फेरेदेली मो घर सावधान भी करदेली मो एबसेन्स से जमी मो घर को आउ न आसे अपमान पाई तेल फेरीगला गला बेले कहीगला मुदी ता चरित्र उपर संदेह करुची से आउ मो घर को केबे हेले आसीबनी हेलेन मोर से दिन व्यवहार देखी आश्चर्य हेले भी टेलर को सपोर्ट करी कौन सी कथा कही नथिला आउ ता परे रॉबर्टसन मो विपर्जयर अंतिम मुहूर्त आसीगला रॉबर्टसन प्लीज प्लीज गिव मी सम मोर टी शेष कथा कहिबाकु मो वॉइस टा केमती चोक ठे जाउची प्लीज रॉबर्टसन मेक हेस्ट

0: Now I feel relaxed. हाँ, कौन कहुथली? सदिन सकाळे पूर्व पर तीन दिन नाइट ड्यूटी सारी मु फेरु थाए घर को आगरु तो कहिछि मेल ड्राइवर रो तीन दिन परे घर को फेरिबारे से जो आनंद अनेक दूररु मो क्वार्टर रो टाइल छत परिष्कार देखा जाउ थाए घर सामना रे गोटे छोटो लॉन ता उपरे नवंबर सकाळ रो खरा क्वाइट रोमांटिक हाड़ भंगा खटुणी परे आग को देढ़ दिन निरवच्छिन्न विश्राम भावुता हेलेन कथा छोट घर टी भीतरे एपट सेपट है से मोपाई ब्रेकफास्ट करने को व्यस्त हो पड़ुव सतरे रॉबर्टसन मोर से छोट क्वार्टर टी देखिले अनेक लोकंर ईर्षा करार कथा बट अलास मनीषर एत आनंद एत सुख हुए तो ईश्वर सह्य कर पारती यू वोंट बिलीव रॉबर्टसन से दिन सकाल सबू सुख सब आनंद मोर धूली रे मिसी गला
1: काकी व्हाट हैपेंड
0: बारंडा ऊपर को उठी गली कबाटा भितर बंद थिला भितर पुरुष कंठर चापा हसर गुंजन सुनी मु तटस्थ हो गली कान पारि सुनिले इते सकाळ कहार ए पुरुष कंठ
2: रियली हेलेन ग्रीन इज ए फुल बंधु हिसाब से तार मो ऊपर गभीर विश्वास तुम कथा शुणी से दिन सीसीना मत फेरीदेला हेले मु ठीक बुझी से मते मोटे संदेह करना खाली तुम मन रखा
3: एक्सक्यूज मी डियर से सब खाली अभिनय एक्टिंग तुम प्रति मन को पॉइजन करिवार गोटे कौशल
2: बट व्हाई मोर तुम पाक आसवे से तो कौन दिन बाधा दिन थिला
3: मुह ऊपर बाधा न देखले भी तांको बिहेवियर मु अनुमान करथले से जेमती चाहदिन तांको एब्सेंस रे तमे आम घर को आसो मु से तो घनिष्ठ हो
2: किंतु से तो बरंग सब बेले त एब्सेंस रे तमको कंपन दब मत रिक्वेस्ट करछि
3: बट नॉट होल हेडेडली
2: काहे के से कोन हम संपर्क को संदेह करे
3: जस्ट पॉसिबल
2: त हाल तुम रेट को आसी पानुचित विशेष करे से घरे नहि छते बेले
3: से कोन डियर तमे कोन आज पर्यंत हेलेन रो हार्ट को चिन्ह पालोनी

0: it's a coward. I hate him.
1: Helen.
0: I hate him. Believe me, dear. तारो पुरुषोत्तम को संदेह करे।
1: But he's your husband.
0: हम बड़ा अनलकी टेलर। ग्रीन पड़ी पुरुष मोरो हस्बैंड। जी निजर वाइफ रो मनो कथा पूछिबा को अक्षम असमर्थ से की हस्बैंड।
1: हेलेन।
0: तादे हरे उस मतारो अभाव। बर परिस्थिति से जो थी भाई आज ये पर्जन तो मोरो असहाय नारित्व तो हाहाकार करी अस्ची। किंतु तुम्हें तुम उस स्पर्श मते उन्माद करी ची उत्तेजित करी ची आज ही मुझे जीवन पूर्ण हो ची चले at last you have made me a mother.
1: Oh, Helen, my darling.
2: Helen! Green, good morning, Green.

0: Really sad, Mr. Green. तापर तमे कौन कलो?
1: कबाट खोली देखिला बेळकु हेलेन रो निबिड आश्रय सो भितरे बंदी हे रहिथिला टेलर। टेलर मोर सहकर्मी बंधु जाकु मु एते विश्वास करथिली जानी पारि नथिली मो अज्ञातरे केबे गढ़ी उठिथिला तांकर से आत्मीयता। रॉबर्टसन तमे होय त कहिबो पिस्तल मारी से दिजन को शेष करि दबा मोर उचित थला किंतु मु ता पारिनि उचित अनुचित विचार करिवार अवसर मोर नथिला। घृणा आउ अपमान रे सेई बारंदा उपर मु फेरी आसिली स्टेशन र रेस सेट को मन भितरे दुर्भावना रो अनेक अड़ुआ तड़ुआ सूता रखियो। बेंच उपर बसि रही चिंता करूथिली दोष कार मोर हेलेन रो ना टेलर रो किंतु से त्रिभुज रो कण शेष अछि रॉबर्टसन से कहानी रो कण उपसंहार अछि केतेबेले संध्या हे जाइछि मते जाना नाही। हठात किए कांदिबार लक्ष्य कली।
0: प्लीज चेनी डोंट क्राई लाइक ए चाइल्ड। विश्वास करो आज मु हायर अथॉरिटी को मीट करी कहिबि से माने मते लोको वर्कशॉप को ट्रांसफर करथु बोली।
2: इज इट सतरे तमे कहिबो?
0: यस डार्लिंग लोको वर्कशॉप रे ड्यूटी कले मो जनरल शिफ्ट हबो
2: किंतु ए तीन राति मो एक रहिबि केमिति केही कण स्पेयर ना दिया जी से दिन पर तुम ड्यूटी टेकअप करी तुमको फ्री कर दिया था।
0: डोंट वरी जेनी ए तीन राति चाहू चाहू चली जीव ता परे मो पूरा देह दिन रेस्ट पाइबी एथर रेस्ट पीरियड को हम मैक्सिमम एंजॉय करबा।
2: नो बंस एथर तुमको पूरा 7 दिन छुट्टी नबा को पड़िबो।
0: 7 डेज?
2: हां हम आउटिंग रे जीबा कोन डार्लिंग छुट्टी नबा ना
0: किंतु ना जेनी ता कोन संभव
2: माइन
0: सी डार्लिंग मदर इज ओल्ड ताछ से अस्वस्थ ताको इकुटिया छड़ी हमर 7 दिन बाहर को चली जबाटा।
2: शो व्हाट थरे पर कहि छी म त म मदर रे सेवा करि परबि नि बोली म कोन एति पई तमको मैरिज करथिली। यू आर माय हस्बैंड म केवल तमरी सेवा करबि आउ कहरि नै बुझिला।
0: प्लीज चेनी एते बड़ पार्टी करछु काहे कि सुनिला कोन भाबिबो।
1: हेलो बंस
0: हां हो ग्रीन गुड इवनिंग जेनी मिस्टर ग्रीन माय कोलीग।
2: Sure, pleased to meet you.
3: Thank you. Buns, मु तुमको वेट कर थिली।
0: माते?
3: Yes, मोर उटा उपकार कर परिवो।
0: कुहा?
3: तमे आजी मो संगरे ड्यूटी चेंज कर परिवो।
0: But, तमे तो नाइट ड्यूटी सारी आजी सकाले फेरिछ।
3: तथापि मु तुम ड्यूटी करी बंस आजी मु बॉम्बे मेल नै जिबी। इट इज मोस्ट अर्जेंट तमे बरं सिक कर घर को जा। 7 दिन छुट्टी नै मिसेस बंस को आउटिंग रे नै जा। मदन को पई चिंता करना मु तो अछि ता छड़ा मु हेलेन को भी कहबी से तुम मदन को अटेंड करबो। प्लीज बंस मोर एतिक रिक्वेस्ट रखा करो।
0: हो ग्रीन लवली ग्रीन हाउ काइंड ऑफ यू। हो ग्रीन आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू।
2: थैंक यू मिस्टर ग्रीन थैंक यू वेरी मच।
3: दैट्स ऑल राइट ओके बाय बाय
2: बाय
3: बाय।
0: तापरे को ग्रीन शीघ्र को राति पाइबो को अल्प बाकी
1: गोटे लंग फॉर बॉम्बे मेल रो इंजन ऊपर को उठि गलि मु इंजिन निया धुआ आउताप भितर सकाळर से दृश्य को संपूर्ण रूपे भूली जीवा को चाहूं थिली मुँ।

दकानी चंद्र हजार रूप सहित समान हब ना सुंदर सुठाम कोटिकंद्र पजिण रूप को देखी धन्य हो गला भीम परवर्त अवस्था भीम मागिता कला हे प्रभु किसी समय पर जो आखि दीटा देलु आखि दीटा मोर नहीं जा हसी हसी हणे नारायण बाबू।

पताका कहिला ए क्षेत्रगढ़ रो फाटक न डेला पूर्वरु तमर सब रोग सब पाप धोई हे जीवो क्षेत्रगढ़ फाटक कईटा आपण मानकर कवि से भागवत प्रधान महोदय कहते पूर्व जी जे

कनर करू आमे उद्धार पाइबा लागी आमे विवाहित आ धर्म पत्नी टिए स्त्री गर्भ रु सुंदर पुआ टिए हेले शेष समय रे आमो मुह रे जल टपा देब आम को मुक्ति करिबो पाइबा पुआ केमिति शास्त्र विज्ञान आपण मान कर जगन्नाथ स पुराण ताकु छाड़ी जगन्नाथ स एथि पई कहिले जो माने ऋतु मते नारी संगबे करंती ना ऋतु मतरे जो माने नारी सहित मिसंती श्रृंगार करंती झियो हब नै पुओ हब रे किंतु जगत ताहा बुझिला नाही जगन्नाथ दासंकर कथा को परिवर्तन कला बाबूरे ए र तळु चारि त तळु चारि कु काढ़ी उपरे लगेले नारी संगम रीति मते आमे निजर हित हित ज्ञान भूली गले पशु वास्तव को मानुला बेले मनीष समाज ता माने ना तेणु जगन्नाथ संस्कृति कहे पूर्व दर राम को संकेत हे मानव जाति हे श्रेष्ठ मनीष जाति पूर्व दिगर तमे सिंह को देखे अनुभव कर सिंह जमीती संयम सिंह जमीती उदार तार नियम को उल्लंघन करनी तमे सेमती संयमित हो तमे सेमती नियम को जदि पालन करिबो ताहले जगन्नाथ जगन्नाथ को दर्शन करिबा तमरो लाभ होइ जिवो पूर्व दिगे बंधा केसरी पश्चिम ता बड़ी चकरी हाथी टिए बंधा हेची हाथी ठो हम को शिक्षा पाइबा कोन आम भितर गोटे आज्ञा उन्मत्त हाथी अच्छी सीओ हाथी टी अन्य को हाथी नुह ता ना हूँ मन रूपक हाथी ए मन मन आत्मत्व वाला हाथी को हे विश्व जगत एडे बड़ हाथी टी हेले मध्य अंकुश रे जमिति आबद्ध होई थाय ज्ञान रूपक अंकुश रे मन को आग निज जितेन्द्रिय कोरिथा मन को निज आयत को कला परे ताहा परे जगन्नाथ को दर्शन करिबू चारोटी द्वार रे आनंद मन रे।

0: آه موسای برونی، آه موسای برونی، حالا برسا برسا بیتی گلا هلی که تو مرسو کلا نه مو آبان چی باکو چهنی آلا ماته مرتیو دیا ماته ایتو نیجا
1: केही तो नहंती का संगरे कथा होचू।
0: अरे गोपाल तो आछु भाई मो कष्ट सही परुनी गोपाल
1: कला कर्म भोगीबा को हबो सालबेग तो बापा लालबेग सिना निष्ठुर थिले हेले
0: मो मु मत निष्ठुर हो जाए छे ता नहले मां को कथा न मानी मु कोन अफगान विद्रोह दमन करबा को जाई थांती
1: मां को कथा न मानी बार फल जानिलु तो मुगल सम्राट जहांगीर रहिले दिल्ली रे आउ तांको आदेश रे सहस निरीह लोकन को हत्या करलु किंतु आजि तमरे कष्ट देखबा को से तो काहे कि आसु नांती
0: तू आउ तांको कथा कहना रे गोपाल अरे सोसो टिके पानी तलु भाई
1: पाटी खोलो मु पानी दोची हाँ एबे सोई पड़ा मु तो मां को पखरे अछि
0: हो मो सोची सब से याल रो इच्छा सब से याला रहिच्छा
2: सब चेष्टा कला परे भी सालव को मोर भलो हेलानी गोपाल इबे कोन करिबे कह ए दुखिनी ललितार एको मात्र साहा भरोसा जगन्नाथ महाप्रभु भी मो पे आज पत्थर ही गले पुओ
1: के कहला माउसी से पत्थर से सब देखु चंती सब जानु चंती से परा अनाथर नाथ जगन्नाथ
2: हां बापो सी सब देखु जी सब जानु जी तान होइथिले कोनो विधवा हिंदू छिय ललिता आज साजी थांता चवन लाल बेकर बेगम
1: छी मौसी से पछ कथा को आ भाबुच काई की बरम तुम एकोइरा बड़ा सालबेग केमिति भला हो से कथा चिंता करो
2: तार से दुख जंत्रणा मु देखि परनी पु इति कष्ट सत शत्रु को नहोरे पु
1: मो मन किंतु कहू जी सालबेग निश्चय भलो हि जीव
2: चिति ताकु कहिली प्रभु चकडळांकर शरणनी से कोनो सुनिला
1: से सुनिबो माउसी ता बेळ आसीले से ठीक सुनिबो तमे आउथरे चेष्टा कर ना माउसी मो बे आसुची
2: सबु दिन एंती आसुथि पुरे पुओ तते देखिले मोर दुख कष्ट मु सबु भुली जाय
1: मु निश्चय आसीबी माउसी तमकु आउ सालबेग भाई कु न देखिले मते कोन भल लागिबो मु आसुची

0: Hey, प्रभु जगन्नाथ तमें जदि सतरे जगतर नाथ तमें जदि सतरे मो मां आराध्य ठाकुर मते भल कर दियो प्रभु मते भल कर दियो कि कष्ट ए कष्ट मु सही पारुनी महाबाहु मांकर मु अबाध्य हेबिनि प्रभु तांकरि आदेशरे तमरि नाकु मु छ दिन हला जपुछि हेले काय सतरे कण मु भल हेबिनि कुह प्रभु
1: जगन्नाथ को डाकु था पुओ से निश्चय तते भल कर देबे
0: कोठी सुनुछन तम जगन्नाथ सब मिछ तमरो उपदेश अनुसारे छ दिन हला जगन्नाथ नाम जप करुछि मो जंत्रणा तो दूर है
1: हबरे बाबू तो कष्ट निश्चय दूर हब तांकरी पाद पद्म रे निष्ठार सह
0: शरण ने भी काठ पथर जगन्नाथ कुआडे अनाथर नाथ।

0: बंद करंतु महामुनि।
1: मने रखिथा बाबू, मु जहां कहि गली ता अक्षरे अक्षरे सत।
2: ताहेले मोर भग्नी देवकीर अष्टम पुत्र संतान हातरे अछि मोर जीवन नाटिका।
0: ठीक, ताकु मुनि हत कले
1: तु हबु अमर अजेय त्रिपुर विजयी कंसासुर। जळरे बुडीबु नाही, अग्नि रे पोडीबु नाही।
0: मोरी कर्मरे मते सहाय हबो किए?
1: अष्टमल्ल
0: कहंती कहंती सेमाने
1: सिद्ध मंत्र जपी स्मरण कले सेमाने आसि तो सभा रे उपस्थित हेबे।
0: मुनि श्रेष्ठ, आपण मो सुप्त चेतना को जाग्रत करि दैछंती। मो से पापी असी देवकीर अष्ट पुत्रंकु मोर एई हातरे गोटी गोटी करी हत्या करिवि। कोणा शिशुर कुआ कुआ राव सुभिबा पूर्वरु तार करुण चित्कार शुणा जीव। मा बक्षरु क्षीर पान करिबा पूर्वरु मु तार रुधिर पान करिवि। ताहेले ताहेले मु हेबि महाप्रतापी बिराधिपी अवर त्रिपुर ध्वंसकारी राजा कंस।
3: नारा

0: कौन है जी?
1: आमो को संशय सागर रे बुड़े ही रखने राजा तम मन कथा खोली कह
2: तीन बार सत्य कले मो कथा निश्चय कहबी
1: त्रिपुर विजयी कंस को आमर अदय कौन अच्छी तुम्हें अधीर अथा ही पड़ुच राजा
0: मथुरा पुरीर गौरव तु भजवंशर मौड़बणी तो पाई मो जीवन मु उत्सर्ग कर दउछि तथापि तु जदि कहुछु मु सत्य करुछि
3: तु एकानु भूणी तुम्हें दुहे सत्य करो
1: दुहे
3: हाँ स्वामी स्त्री दुहे
1: बेस
0: आमे दुहे सत्य करुछु
4: त्रिबाण करुछु।

0: केतु
1: निद्रा भांगी तेबे
0: किंतु केतु सबु आड़े प्रहरी सबु द्वार रुद्ध तू एठी के आसिलु केमिति
1: बुझी पारिलो नाही देवी स्वप्न रे जा सबु देखिलो जा सुनिलो
0: स्वप्न तू तेबे स्वयं गोलोक बिहारी विष्णु मु अन्याय करिछि मु अपराध करिछि
1: ना ना जननी तुम्हें अपराध करिनो अपराध मु करिछि सृष्टिर पालन करता है एते दिन धरी तुमर दुख मोचन करि पारले नाही सेइथिपाई तो हाथरे भिक्षा जुली धरी आज आसी तुम पवित्र गर्भरे मते स्थान दियो
0: नहीं नहीं नहीं चिंतामणि तू ए भ्रम करनी

0: देवकी देवकी तुमको कष्ट होनी तो
1: ना स्वामी मोर आ किछि कष्ट नहि मोर ए अष्टम संतान मो धनमाली को देखु देखु मोर सब प्रसव वेदना दूर हे गलाने
0: हे अंधकार बंदीशाला आज भाद्र कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र देवकी पुओ तुमर जन्म हवा मात्रे ए कारा कुठरी जेमिति आलोकित हो उठिला
1: मोर से दिनर से स्वप्न कथा कोन तबे सत हिची
0: से कथा से नारायण जानंती बाहरी सब प्रहरी जगवाला सुप्त सब द्वार रुद्ध आम पुत्र जन्म हवा कथा के जानंती नै
1: किंतु किंतु जते बेले जानिबे कंस जते बेले जानिबो जते बेले जानिबो जे देवकी रो अष्टम संतान जात हिची
0: ना ना देवकी तमे दुश्चिंता करो नै आखिया करे आम पुओ को देखि मोर मन प्राण पुलकित हि उठछि देहरे मोर रोमांच जात होछि
1: ठीक कहिछ तमे क्षणक पई जेमिति सब आशंका उद्वेग दूर हो जाउछी

0: ना ना ना मु देबी नहीं मो धनमाली से राक्षस हाथरे मु तते देबिनी तते कोळरे धरी मु ए माटीरे मिसि जिबी पवनरे उडी जिबी
1: सुनो देवकी सुनो जेते हेले भी तमे दुर्बल होई पडिजो राती तो बहुत अछि तमे ठीक सोई पडो
0: सोई भी
1: हां सो मु जाके छी तमे सोई पडो

0: कहो कहो तू किए
1: मु वसुदेव
0: वसुदेव मोर जामा था मथा रे कौन नवजात शिशु देवकिरी अष्टम गर्भ संतान को नहीं तू मथुरा छाड़ी चली जाऊ मूर्ख असंग सुनी नौ तू कंस राज्य जानी नौ तू कंस प्रताप
1: ए संतान देहरे तुम रक्त प्रवाहित राजा मते छाड़ी दियो
0: छाड़ी देवी छाड़ी देवी छाड़ी देवी केश आकर्षण करी तते कंस अग्नि ठिया करेबी चल चल मूर्ख

0: कौन देखुची
1: सन्देह मोचन हेला तो जानिलो तो मु किए
0: प्रभु मोर दोष क्षमा करो प्रभु क्षमा करो न जानि मु महा अपराध करिछि प्रभु
1: ना तुमे किछि अपराध करिन कंसर आज्ञा रे तुमे तुम कर्तव्य पालन करिछ
0: मोर आनंद मोर कन्या गर्भरे स्वयं नारायण स्थान पाई मोर आज कि आनंद राजा होजी खटुआल मोर दुर्दशा आज मुझी जाऊँ गोविंद मुझी
1: तुम ये दुर्दशा आ बेसी दिन रही राजा आस मो निकट को आसो

0: कौन करी भरा जमुना उछुड़ी उठू केमी मु पारि हेबी ए भाग्यर जहा था पछे मु निश्चय नदी पार हेबी पाणी बढ़ी बढ़ी चली थलकूल पाऊ नहीं ना भासी जीवी पछे किंतु मो नारायण को मु छाड़ी भी नहीं ना ना केबे मु छाड़ी भी नहीं
1: हे पुण्यतया जमुना अचिरे तोरी कूल कदम्ब मूल रे मु बहु लीला खेला प्रकट करिबी मोर आदेश वसुदेव जीवा पाई तू तो बक्षर जल को दुई भाग कर दे
0: कौन है आखि पिछुड़ा कि पानी दी भाग हो गला पानी मात्र भड़ा गंठी तो मुझे आसी पहुंची गली

0: ग्रामरे प्रवेश करिछंती सेई ग्रामरे गला बेले लाल बेग देखी आज्ञा गोटे सुंदर पुष्करणी।
1: अच्छा
0: ये पुष्करणी टे देखी ये आत्मविभोर हो से स्थान ओल्लाई पड़ी आपण मान लाल बेग
2: आज्ञा विभोर हेला कहीं
0: ओल्लाई पड़ा पर देखी से पुष्करणी रे जने अपूर्व सुंदरी लास्यमयी हास्यमयी सुंदर नायिका टे स्नान करुछि।
1: अरे बाबा
0: ता ए सुंदर रूप रे विमुग्ध हो जाए आपण मान करो जवन लाल बेग बा जहांगीर कुली खा।
1: हाँ। आज्ञा
0: कहिछि।

यज्ञ वराह हिरण्याक्ष को संहार करे देवता मानंकर संकट दूर करने को कहते हिरण्याक्ष कोप करी प्रभु को गदा प्रहार कला माया बल रे ताको से सही नेले से युद्ध भयंकर रूप धारण कला शेषे प्रबल वायु प्रवाह रे वृक्ष जेपरी भूई रे उपुड़ी पड़े सेपरी घोर रड़ी छाड़ी हिरण्याक्ष प्राण छाड़े।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
2: प्रचार करुछु श्रीक्षेत्र माधुरी। आज विषय रही दईता सेवा। आलोचक दुर्गादास महापात्र, प्रयोजना प्रदीप्त श्रीचंदन। श्रीक्षेत्र माधुरी।